सिरक सबर की लड़ाई जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नू वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, इथों तक आखिया कि तुहानू

कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर, बाणी विच महाराज कहते हैं कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए, बड़ी कोशिश की इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान किया।

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्दियां विच सौण वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उमरां भी बड़ियां छोटियां छोटियां पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या, ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे। आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे टाकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी मलेरकोटले का नवाब अश अश कर उठा, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कह लगा ए नवाब साहब, सब दे बच्चे हमेशा सप ही होंदे हैं, इन्हों का मूह बाहर क्ढन तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिए है, इन्हों खत्म कर देना चाहिए है। ते फतवा भी की लाया, नीह दे विचण दिओ, जिंदा ही नीह दे विचण मार दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चिया ने जिंदा ही नीह दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले,

क्यों बारहवीं पे है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमदे मुख्तार आ गया, और घर आमिना के सैयदे अबरार आ गया। खुशियाँ मनाओ गमजदो गम ख्वार।

0: ध्यान मगन। भगवती श्री महालक्ष्मी का महालक्ष्मी स्तोत्र श्रवण करें। नमोस्तुते महामाये श्री पीठे विश्व पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोल्हासुर भयंकरी कौमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वदा सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वसिद्धि प्रदे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वसिद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा वंदे महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगिनी योग संभूतारी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्माक्षी वै महामाये महालक्ष्मी नमोस्तुते। परमेश्वरी महामाये महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते मंत्रमूर्ति सदा वंदे महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूले सूक्ष्मे महारौद्रे महाशांति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकमिदं पठते भक्ति तो नरः दुख दारिद्र शांतिश्च राज्य प्राप्तिश्च शाश्वती। कालमेकं पठेन नित्यं महापातक नाशनम द्विकालं पठते नित्यं सर्वशत्रु विनाशनम त्रिकालं पठते नित्यं प्रसादो हि भवेत् खलु। यः पठेत् प्रयतो नित्यं दारिद्र्यं नोपजायते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब आइए, आप अपने व्यापार कारोबार दुकान या दफ्तर की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करें। पूजन के लिए पहले आवश्यक है कलम दवात और पुस्तक यानी कैश बुक डे बुक लेजर इत्यादि और आपका गल्ला या सेफ। पूजन का थाल सामने रखते हुए थोड़ी सी मौली अपनी कलम के ऊपर बांधें और प्रार्थना करें। ओम मशी त्वम लेखनी युक्ता चित्रगुप्ता शस्तिता सदक्षराणाम पत्रे च लक्ष्यम कुरु सदा मम। या माया प्रकृति शक्तिश्चंड मुंड विमर्दिनी सा पूज्या सर्वदेवैश्च यस्माकं वरदा भव। अब लेखनी यानी स्याही दान दवात के ऊपर मौली बांधें और तिलक करें और प्रार्थना करें। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामाद्यम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यंधकारापहाम हस्ते सप्टिक मालिकाम विद्धदतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम इति लेखनी नमः। अब आप अपना बही खाता कैश बुक डे बुक लेजर इसके पहले पन्ने पर स्वस्ति गणेश चिन्ह छाप कर उसके ऊपर चावल फूल पत्तियां और मौली चढ़ाकर प्रार्थना करें। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला सा शुभ्र वस्त्र आवृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिर्भिर्दय वै ही सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारण्यै ही नमः। अब आप अपने सेफ गल्ले आदि में चावल छिड़ककर फूल पत्तियां चढ़ाकर और सेफ और गल्ले के अंदर गणेश बनाकर पूजन करें। आवाह्यामि देवं त्वामिहायाहि कृपा कुरुम कोशं वर्धि नित्यं त्वं परिरक्षस्वरेश्वर धनाध्यक्षाय देवाय नर्यानोपवेशिनि नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। और अंत में अपने दफ्तर और दुकान के भीतर चावल छिड़क कर फूल पत्तियां छिड़कते हुए प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वदेवानां शक्ति इतये सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगधात्री निर्मता विश्वयोनिना। सब के अंत में दिवाली का त्योहार सजता है दीपावली से, यानी मकान के चारों ओर हम दीपक और मोमबत्तियां जलाकर अपने मकान की छवि को संवारते हैं। आइए पहला दीपक जलाने के लिए प्रार्थना।
1: ब्रॉडकास्टिंग टू द एशियन कम्युनिटी 24 आवर्स अ डे, दिस इज सनराइज रेडियो यॉर्कशायर।
2: From the Sky News Centre at 7, several rail operators are expecting major disruption to trains to continue today. Hundreds of services came to a standstill yesterday after a power failure caused outages in the Midlands and northwest of England. Transport Secretary Heidi Alexander says she's receiving regular updates and urged people not to travel unless it's necessary. Travel expert Simon Calder says questions need to be answered.
3: It is absolutely critical infrastructure, and I imagine that perhaps an inquest is beginning into how there wasn't an immediate switch to a backup system to keep the trains running.
2: A school shooting in Thailand has left 7 dead, including a teacher. Police say 15 others have been injured. The suspected gunman, believed to be a student, is understood to be amongst those killed. Meta has been ordered to pay more than £420 million to address the harm caused to children on its platforms. The owner of Facebook, Instagram and WhatsApp says it disagrees with both rulings and will appeal. Meanwhile, most teenagers are apparently going to opt out of the government's planned social media curfew. Under the proposal set out by the former PM Keir Starmer, 16 and 17-year-olds would be prevented from accessing apps by default between midnight and 6 a.m. But a poll by Censuswide found almost 85% will turn off the restrictions. Social media consultant Matt Navara doesn't think it'll work.
4: Ministers call these features addictive in their own announcement, but then you hand them teens a switch that they can use to turn it all off. So there's a whole contradiction in there. And they've tried to please everybody, the platforms, the privacy campaigners, parents, but they've managed to annoy everyone.
2: 4 men have been arrested after disorder in South Wales left 2 people critically injured. Police say firearms officers were deployed near Pontypool. And FIFA president Gianni Infantino has received the backing of the Confederation of African Football. The body believes he's the right man for the job, despite his abandoned plans to sell off a stake in the World Cup. That's the latest. I'm Imani Rana.

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.
1: रंग भी है, भंग भी है।

0: चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

0: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी जिंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहतो भरा खलूस की अता गहराइयों से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रियकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा और आपके पिछले 3 हफ्ते और आज का दिन खैरियत से गुजर रहा होगा। आप छुट्टियों के खूब मज़े ले रहे होंगे, आप सब खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने रहम करम के साए में रखे और आपके तमाम खूबसूरत रिश्तों को, आपके तमाम चहेतों को, आपके चाहने वालों को, आपके हमसायों को, आपकी औलाद को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके दोस्तों और अहबाब को अल्लाह पाक हमेशा हमेशा अपने नेमतों के साए में रखे। सब के लिए खैर बरकत और सुकून, राहत से तंदुरुस्ती, खुशहाली और दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे अल्लाह पाक आप सबको। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को आफियत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हलाल रिज़्क और जान माल में आपके बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। अल्लाह ना करे अगर आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और आपको दिली जिस्मानी और रूहानी सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक आमीन सुम्मा आमीन।

0: हमारी और आपकी मुलाकात हुआ करती है फ्राइडे को 11 और 2 के दौरान पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ। यादों का सफर होता है और आप हमेशा हमारे हम सफर रहे हैं और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं कि आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा और आपकी दुआओं के संग संग ये सफर हम तय करेंगे 2 बजे तक, और आपकी यादों को उजागर करेंगे और आपको ले चलेंगे आपके बचपन में, आपकी हंसी जो यादें जो छुपी हुई हैं आपके दिलों में उनको उजागर करेंगे और एक बार फिर से ताज़ा करेंगे। चंद लम्हों के लिए आपकी यादें जो है वो हम आपको लौटाएंगे खूबसूरत आवाज़ों के साथ और आपके मनपसंद गीतों के साथ। आपकी डेडिकेशंस भी होंगी और आपके पैगामात भी होंगे 12 बजे की खबरों के बाद। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें हमारे गीतों के साथ, पुराने सदाबहार गीतों के साथ, अपने नाम को या अपनों के नाम को जोड़ना चाहें तो नंबर रहेगा 01274306666। तो चलते हैं, आपको सुनाते हैं हिट ऑफ द आवर और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: हुसैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: मुस्कुरा के हमको लूटा आपने। जी हाँ जी, आपकी मुस्कुराहटें, आपकी हंसी, आपका प्यार मोहब्बत हमारा दिल भी लूट लेता है। बहुत खुशी होती है आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं तो आपकी खैरियत मालूम होती है और आपकी दुआएं हम पाते हैं तो दिल को बहुत खुशी महसूस होती है। आप साथियों का बेहद बेहद शुक्रिया। बहुत दिनों की गैर हाजिरी के बाद आज हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, आपकी दुआएं हमें लेकर आई हैं एक बार फिर से आपके पास, और आपकी दुआओं का और आपके प्यार मोहब्बत खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। यादावरी का बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, सभी को खुश आमदीद कहते हैं। आप सुन रहे थे मुकेश जी को कमर्शियल के बाद, और हम आपको जुमा की एक बार फिर से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और सभी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज जी हाँ जी, जुमा का दिन है और हमारी मुलाकात होती है 11 और 2 के दौरान। आप जानते हैं फॉर्मेट हमारा के पहले घंटे में हम आपकी यादों को ताज़ा करते हैं, आपको याद दिलाते हैं और आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है, क्या आ रहा है, और उसके मुताबिक फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं आपकी फरमाइशों के मुताबिक और आपकी चाहत और आपकी सोच के मुताबिक। जो भी गीत आपके दिल में होता है उसे कोशिश करते हैं कि वो गीत आपको सुनवा सके। अगर वो ना मिले तो उससे मिलता जुलता गीत हम आपके लिए पेश करते हैं, आपकी मनपसंद आवाज़ें आपके नामों के साथ हम ढूँढ कर आपके लिए पेश करते हैं, और हमेशा आप हमारे जो होती है चॉइस होती है उसे पसंद करते हैं। आज भी जो गीत हमने अभी 2-3 ही लगाए हैं आपको अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर मिसेस हुसैन, आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं, आपने सभी को दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, यादावरी का और आपके खलूस और दुआओं का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत मिस किया, हमने भी आपका प्यार और आपकी दुआएं बहुत मिस की। आज हमने आपकी दुआएं पा ली हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे प्यारे से भाई तारिक जुल्फी भाई, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह अपने भाई से बात करके आप हमेशा अपने दोस्तों को और अपने अहबाब को याद करते हैं, उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं भेजते हैं, दिल से उनके लिए दुआएं करते हैं, और उन सभी को, तमाम सामीन को, सनराइज़ की तमाम टीम को और आपके तमाम दोस्तों को जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारक और ढेर दुआएं हैं आपकी जानिब से भी। और इसके अलावा हमें मैसेज मिला, हिना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि बहुत मिस किया आपने भी हमें, तो आज आप बिल्कुल तैयारी के साथ बैठी हैं और तैयार हैं चाय का कप लेके कि आज क्या क्या होने वाला है, धमाके होने वाले हैं। जी हाँ जी, आपकी यादें जो है वो उबल कर बाहर आ जाएंगी, हम ऐसे ऐसे गीत लगाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, आपकी दुआएं और आपका सलाम हमारे तमाम सामीन के लिए था, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे अगले गीत की जानिब। अजी नहीं, अभी हमने आपको टाइम तो बताया ही नहीं, बातों में आगे बढ़ गए, चलिए टाइम बताते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में जो के यूके का टाइम है वो है 11:26। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जिसे आप सुनेंगे और वाह वाह कर उठेंगे। मेरा मनपसंद गीत है आप तमाम के लिए जो आ चुके हैं, जो आ रहे हैं आपके लिए भी, और जो सुन रहे हैं खामोशी से आपके लिए भी है। छुप गए सारे नज़ारे, क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा और मुलाकात हो गई। आपकी दुआएं ले आई हैं हमें यहाँ पे आपसे मिलने के लिए और आपसे बातें करने के लिए।

0: दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। जी हाँ जी, दिल से जब कोई चीज़ मांगी जाती है तो वो मिल ही जाती है। बस दिल में खुलूस होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए और खुदा पे यकीन होना चाहिए। इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

तब से हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। बहुत ही खूबसूरत गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 FM पे, आप सुनते हैं काउदर डेर और इर्द गिर्द के इलाकों में। इसके अलावा डी ए बी के जरिए आप सुन रहे हैं किसली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकेशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मेल्टन कीन्स में। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ और आपके साथ साथ। यादों का ये सफ़र जो है आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का, हमारी हमें याद करने का, हमें अपनी दुआओं से आपने नवाजा। बहुत अच्छा लगा हमारे प्यारे से भाई मोहतरम अब्दुल कयूम फराइजिंग हॉल से आपसे बात हुई। बहुत अच्छा लगा आपने तमाम सनराइज की टीम को, अपने तमाम दोस्तों को और तमाम सामेन को ढेरों ढेरों दुआएं भेजी हैं, सलाम और दुआ पेश किया है और जुमा की दिली मुबारकबाद पेश की है। और बात हुई थी हमारे बहुत ही मोहतरम प्यारे से भाई हीरा खान जी, आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपने भी तमाम सामेन को, सनराइज की टीम को, अपने तमाम दोस्तों को, अहलो अहबाब को जो भी सनराइज को इस वक्त सुन रहे हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, दिली दुआएं भेजी हैं और जुमा की दिली मुबारकबाद भी पेश की है। खैर मुबारक, वालेकुम सलाम, उन सब की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वाजिद भाई भी कॉल कर रहे हैं, अब ये कॉल दूसरी बार भी लगता है मिस हो जाएगी क्योंकि मैं ऑनर हूँ। जो हुई मैं गीत लगाऊंगी फिर इंशाल्लाह आपसे बात जरूर हो जाएगी। आप हमेशा याद करते हैं, दुआ में याद करते हैं, आपकी जानिब से तमाम सामीन को, सनराइज की टीम को और आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की प्यारी सी आवाज़ में आपके लिए है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की,

0: इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर आजमाओगे तो मर जाऊंगा। एक आरजी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती में, एक आरजी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती में, तू जहाँ मुझे कहोगे वहीं उतर जाऊंगा। हाथ पकड़ोगे तो साया बनके साथ चलूंगा, हाथ छोड़ोगे तो हमेशा के लिए बिखर जाऊंगा।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:45 और हम लेंगे ब्रेक।

एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा और परमानेंट भी हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो मतलब कि उम्र कैद हो गई। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से लिया गया, मेरी मनपसंद मूवी से लिया गया ये गीत था। शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप ही के लिए था। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया है ना आपका, आप प्रोग्राम को सुन रही हैं, गीतों को इंजॉय कर रही हैं और सभी के लिए दुआएं भेजी हैं आपने, आपका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं जल्दी से एक और खूबसूरत से गीत की जानिब, और फिर खबरों का वक्त भी करीब करीब है और ये घंटा भी अपने अख्तिताम को पहुंचने वाला ही है, 6 मिनट बाकी है। तो जल्दी से ये गीत सुनते हैं और सुनवाते हैं आपको, इंजॉय करते हैं और फिर खबरों की तैयारी करते हैं।

0: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जफर इकबाल की आवाज में हिट ऑफ द आवर आपने सुना 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे सुन रहे हैं आप हमें सारी दुनिया में। इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप हम सुनते हैं हमें अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और कालडेडेल के इलाकों में। डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन किन्स के इलाकों में भी हम जल्दी आने वाले हैं। बहुत जल्द लॉन्च हो रही है हमारी सनराइज की नशियात, वहां भी आप हमें सुन सकेंगे सनराइज को। मैं हूं शहनाज मंसूर, आप हमें सुन रहे हैं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सुनेंगे हमें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आन पहुंचे हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने बहुत ही प्यारे मोहब्बत के साथ हमारा साथ निभाया, हमारे साथ साथ रहे और आपके साथ साथ दूसरे घंटे में आपकी दुआओं और आपके प्यार के साथ साथ हम पहुंच आए हैं दूसरे घंटे में भी। उम्मीद और यकीन है कि इस घंटे में भी आप यूं ही हमारा साथ निभाएंगे और हमारे साथ साथ चलेंगे, क्योंकि आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ही प्रोग्राम का और गीतों का मज़ा दोबाला हो जाता है और भी मज़ा आता है जबकि हम गीत आपके साथ मिलकर सुनते हैं। वैसे तो गीत हमेशा हम घर पे भी सुनते हैं, गाड़ी में भी सुनते हैं और पार्टीज वगैरह पे भी गीत लगते हैं, लेकिन जो मज़ा आपके साथ सुनने का होता है ना, उसका तो आप क्या ही बयान ही नहीं कर सकते कि वो कितना मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, आपने याद फरमाया, आपने दोस्तों अहबाब को, साथियों को, सनराइज की टीम को दुआएं भेजी, आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपकी डेडिकेशंस होती हैं, आपके पैगामात का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले आपको टाइम बताना है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में जो कि यूके का टाइम है वो है 9 मिनट्स पास 12, 9 मिनट हो चुके हैं 12 बजकर।

जी हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में जो प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हमें मैसेज मिले थे, जी हाँ जी है ना जी, आपका और मिस्टर मिसेस हुसैन आपके मैसेजेस मिले थे हमें, बहुत बहुत शुक्रिया यादाबरी का और दुआओं का और हमेशा साथ निभाने का, और आज भी आप हमारे साथ साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमेशा की तरह सनराइज़ की टीम को दुआएं भेजी हैं और हमारे सामेन को भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और हमारे मोहतरम भाई जी हाँ जी तारिक जुल्फी भाई आपके नाम भी करना चाहेंगे, आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहेंगे। आपकी टीम में शामिल हैं आपके दोस्तों के नाम हैं हीरा खान हैं, महबूब इलाही हैं, और इसके अलावा बाबा जानी हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, वाजिद हरिसफील में हैं, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, अयूब चौहान हैं मैनचेस्टर में, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, सुल्तान महमूद भाई कराची वाले हैं, चौधरी फरियाद पाकिस्तान में हैं, सफीउल्लाह भाई हैं, शकील भाई बर्ली में हैं, नवीद राना भाई हैं, चौधरी वलायत खान हैं, और इसके अलावा चौधरी फरियाद जो कि पाकिस्तान में है, तारिक बट हैं, कियानी मुदस्सर भाई के नाम भी और परवेज़ खान के नाम, आमिर शहजाद के नाम, और जितने भी आपके दोस्त इसको सुन रहे हैं उनके नाम और आपकी तमाम टीम के नाम और सनराइज़ की तमाम टीम के नाम और सामीन के नाम भी। ये प्यारा सा गीत, और मुझे उम्मीद और यकीन है कि हमारे सामीन को भी ये गीत अच्छा लगेगा।

0: दिल ठहर जा यार दा नजारा लैण दे मुनीर हुसैन की खूबसूरत आवाज सदाबहार आवाज और बहुत ही प्यारा सा गीत था जिसे आपने सुना सनराइज रेडियो पे। और आप हमें लेनी है ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
5: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.

से भूल हो गई हमका माफी दे दो। बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे सुन रहे हैं आप हमें पूरी दुनिया में 100.6 FM पे कालटेर और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाकों में आप हमें सुनते हैं। डीएबी के जरिए आप सुन रहे हैं हमें कीटली इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिटन और मिल्टन कीज़ में हम आने वाले हैं। थोड़ा सा शायद आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं हूं

प्लेस ढूंढते हैं, गायब हो गई। ये रही अब्दुल कयूम बाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम और आपके दोस्तों के नाम, और तारिक जुल्फी भाई आपके नाम आपके दोस्त के नाम, और हमारी बात हुई थी वाजिद भाई आपसे भी, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। आप भी प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं और अपनी दुआओं से नवाजते हैं। आपने कहा कि 3 हफ्ते आपने हमें बहुत मिस किया, हमने भी अपने साथियों को अपने भाइयों को और बहनों को बहुत मिस किया, ख़ासतौर पर आपकी दुआओं को हमने मिस किया। तो चलिए आज आ गए हैं बटोरने आपकी दुआएँ जो कि हमें मिल रही हैं, उसके लिए आप तमाम का बेहद बेहद बेहद शुक्रिया। ये प्यारा सा गीत वाजिद भाई आपके लिए है और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम, जिनमें शामिल हैं जी हाँ जी महबूब इलाही हैं, तारिक जुल्फी हैं, हीरा खान जी हैं, अयूब चौहान हैं, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर जी हैं, परवेज खान हैं, आमिर शहजाद। इन तमाम दोस्तों के नाम और सनराइज़ की तमाम टीम के नाम आपकी जानिब से ये प्यारा सा अनमोल गीत, हाय रे हाय। नींद नहीं आए

दिल के जख्मों को जमाने से छुपा रखा था, दिल के जख्मों को जमाने से बचा रखा था, हमने हर दर्द मोहब्बत का दबा रखा था। फिर तेरी याद का मौसम जो चला शाम के बाद, फिर तेरी याद का मौसम जो जला शाम के बाद, आंख ने सब्र का दरवाज़ा गिरा रखा था। मैंने आंसू से कहा यूं ना रुसवा कर मुझे, लोग पढ़ लेते हैं चेहरा, ऐसे ना रुलाया कर मुझे। आंसू हंस कर ये बोला मुझे आने दो, आंसू हंस कर ये बोला मुझे आने दो, दिल के बोझ को कुछ देर हल्का हो जाने दो।

आज आना मेरे दिल जाने ते कुंड लगे कलियां दे। शमशाद बेगम की आवाज में खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। मैं हूं शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूं दोपहर दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी आवाजों के साथ और आपकी डेडिकेशन के साथ साथ, और आपके साथ साथ भी, जी हाँ जी, आपका साथ भी हमें मिल रहा है। आपसे बातें हो रही हैं, आपसे मुलाकातें हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बातें करके अच्छा लगता है, आपका हाल जान के बहुत अच्छा लगता है कि आप ठीक ठाक हैं, खुशपाश हैं, मौसम बहुत ही खूबसूरत है। इंजॉय कीजिए चंद ही दिन के, ये जो मेहमान है, ये जो मौसम, ये हमारे साथ चंद दिनों के लिए है, इसके बाद तो फिर सर्दी ही सर्दी। जी हाँ जी, गर्मी का थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए। तो अब आते हैं एक जल्दी से एक और खूबसूरत से दुकाने की जानिब, और ये गीत मैं सुनवाना चाहूँगी, नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी। आपके नाम बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, प्रोग्राम में शिरकत करने का और अपनी बहन को दुआओं से नवाजने का। आप अपने तमाम दोस्तों को आपने सलाम भेजा है और ढेरों ढेरों दुआएं भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। आपके दोस्तों में शामिल हैं तारिक जुल्फी है, महबूब इलाही है, चौधरी मुजफ्फर है, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में है, अयूब चौहान हैं और वाजिद भाई हुरसविल में है, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत है, सुल्तान भाई कराची वाले हैं, चौधरी फरियाद हैं, सफीउल्ला भाई है, शकील भाई बरले में है, नवीद राना है, चौधरी वलायत खान हैं और तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ खान और आमिर शहजाद के नाम हीरा खान जी आपकी जानिब से, और हमारी जानिब से तमाम सामीन के नाम और आप तमाम के नाम जो भी इस वक्त सनराइज को सुन रहे हैं। ये दिल और उनकी इन निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए

0: मोहब्बत के रंगी पनाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत गीत आप तमाम साथियों के लिए हमने पेश किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही के लिए था। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वाजिद, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आपने अपनी बहन को याद किया और हमेशा याद करते हैं और दुआओं से नवाजते हैं। आपके लिए पंजाबी का गीत भी आ रहा है थोड़ी देर में, पंजाबी का गीत जो हम लगाएंगे वो आपके लिए होगा। हमारी बात हुई हमारे बहुत ही मोहतरम भाई भारी मलिक भाई, डॉक्टर भारी मलिक भाई, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आपने प्रोग्राम को और गीतों को पसंद किया, आपका बेहद शुक्रिया। और आपके साथ साथ हमारी भाभी जान भी हैं जो कि प्रोग्राम को सुन रही हैं, गीतों को इंजॉय कर रही हैं, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। आपने सभी को दुआएं भेजी हैं और जुमा की दिली मुबारकबाद भी पेश की है, बेहद शुक्रिया, खैर मुबारक और वालेकुम सलाम सामीन की जानिब से भी और सनराइज की तमाम टीम की जानिब से भी। याद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नेक दुआएं हैं आप तमाम के लिए भी, और आपने अपने कीमती वक्त से हमें याद किया उसके लिए आपके मैं मशकूर और ममनून हूँ। इससे पहले कि अगला गीत लगाएं, पंजाबी का गीत है जो कि आप सबके लिए होगा और आपके नाम नहीं जोड़ूंगी क्योंकि आपके नाम को जोड़ूंगी कमर्शियल्स के बाद, और जो कि क्लासिक गीत होगा पंजाबी का, उसके बाद आपके नामों की बारी फिर हम शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे साथ हैं, हमारा साथ निभा रहे हैं, हमारे हम सफ़र हैं और सफर बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आप हमारे साथ हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:44 और 45 होने वाले हैं चंद ही सेकंड में, लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: 24 hours a day, Sunrise Radio. Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 07834 177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
6: Sunrise Radio, Sunrise.
7: Classic Flashback brought to you by Bala Hisar Restaurant. For delicious food and unique culinary experience, visit Bala Hisar, 46-50 Highgate, Heaton, Bradford BD9 4BE, or call 01274 020-111.

सुखा सुखनिया तेरिया नाल वे डाचे वाले अमोर महार वे। बहुत ही खूबसूरत गीत सुरिंदर कौर की आवाज़ में आपने सुना, मुझे यकीन है वाजिद भाई आपको अच्छा लगा होगा और मिसिस कौर आपको भी पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे भी आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा 100.6 FM पे आप सुनते हैं कालदरडेल में और अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में। DAB के जरिए आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में हम आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो कि प्रोग्राम को सुनते हैं और इसके अलावा भी बहुत से जरिए हैं जिसके जरिए आप हमें सुन सकते हैं। एप्पल स्टोर से और गूगल मैप के जरिए भी आप हमें जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 2400 घंटे ऑनलाइन सनराइज को सुन सकते हैं। और यादव भरा प्रोग्राम है और यादव भरे गीत है, पुरानी आवाज़ें, सदाबहार आवाज़ें जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिन्हें आप हमेशा सुनते हैं और हमेशा सुनने को जी चाहता है, जिन आवाज़ों को और जिन गीतों को, वही गीत हम लेकर आते हैं, आपकी यादों को उजागर करते हैं, आपकी पुरानी सदाबहार यादें जो कि कहीं कोने में छुपी होती हैं उन्हें फिर से ताज़ा करते हैं और आपको आपकी यादों में हम डुबो देते हैं। कभी कभी तो आप तैर भी जाते हैं और कभी कभी डूबे रह जाते हैं। आज देखते हैं क्या होता है, आप डूबते हैं या उभरते हैं। ये प्यारा सा गीत मेरा मनपसंद गीत है, बहुत ही पसंद है। आजकल वैसे तो खत खताबत का जो है वो सिलसिला नहीं है, मैसेजेस और व्हाट्सएप और दिस एंड दैट होता है, लेकिन ये उस ज़माने की बात है, हमारे बचपन की बात है जबकि खत खताबत होती थी, खत आते थे, हम पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे और हर बार उसका कुछ नया ही मतलब निकालते थे, मीनिंग्स होती थी, कभी ट्रांसलेशन उसकी कुछ ना कुछ बना लेते थे, जो जी चाहता था उसके मीनिंग्स हम ले लेते थे। जितने बार पढ़ते थे हर खत के वो उसी लफ्ज़ को हम दूसरे मीनिंग्स में भी ले लेते थे, अपने मतलब की मीनिंग्स में। लेकिन बहुत मज़ा आता था खत बार बार पढ़ने में। लेकिन आजकल मैसेजेस आते हैं, हम मैसेजेस पढ़ते हैं, मैसेजेस डिलीट कर देते हैं और बस ये आजकल का सिलसिला है। लेकिन उस ज़माने को याद करते हैं जबकि खतों का इंतज़ार होता था, डाकिये का इंतज़ार होता था, गली में जब डाकिये की घंटी बजती थी तो अम्मी कहती थी कि दौड़ के जाओ देखो खत आया होगा तुम्हारी बहन का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे अब्बा का, तुम्हारे मामू का। तो हम दौड़ते जाते थे और वो एक बंडल हमारे हाथ में दे देता था और फिर अम्मी खुद भी पढ़ती थी और फिर हम सभी पढ़ाती थी बार बार, तो बहुत मज़ा आता था। और बाज़ दफ़ा तो वो कहते हैं ना, देख जब अम्मी बार बार कहती थी कि पढ़ो तो कहते थे कि एक दो बार पढ़ लिया अब क्या है, लेकिन उन्हें बार बार सुनना अच्छा लगता था। अब हम इस उम्र में हैं तो हमें समझ आती है कि जब जुदाई होती है, बच्चे दूर होते हैं तो क्या तकलीफ होती है और उनका खत और उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो क्या मीनिंग रखता है। तो चलिए ऐसी ही यादों को ताज़ा करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये मेरी मनपसंद फिल्म संगम मूवी से लिया गया गीत है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहूँगी, आपके दोस्तों के नाम करना चाहूँगी, तारिक जुल्फी भाई आपके नाम करना चाहूँगी, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल में आपके नाम करना चाहूँगी, महबूब इलाही भाई आप फ़ोन कर रहे थे माज़द चाहूँगी आपकी कॉल मिस हो गई, ये आने वाला गीत आपके नाम भी करूँगी और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करूँगी और अपने मोहतरम भाई बारी मलिक भाई आपके नाम करना चाहूँगी और अपनी प्यारी सी भाभी, जी हाँ जी भाभी आमना जी, आमना मलिक के नाम भी करना चाहूँगी, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम सामईन इसको मेरी तरह इंजॉय करेंगे।

0: संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को जुबां पे मगर फिर भी तेरा नाम आ रहा है। कुमार शानू की बहुत ही मीठी आवाज में बहुत ही प्यारा सा हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। टीवी के जरिए आप सुनते हैं ब्रेडफोर्ड कीसली इल्कली स्किप्टन लीड्स हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन और एक्रिंगटन में। इसके अलावा एप्पल ऐप स्टोर से एंड गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे ऐप वेबसाइट पे हमें सुन सकते हैं 2400 घंटे। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं जी हां जी 2 बजे तक प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आन पहुंचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है जी आयन खुश आमदीद वेलकम गुड आफ्टरनून और जुमा की एक बार फिर से मुबारकबाद कबूल कीजिए। उम्मीद करती हूं कि जिस तरह आपने पिछले 2 घंटे हमारे प्रोग्राम को इंजॉय किया गीतों को इंजॉय किया हमारा साथ निभाया अपनी दुआओं से और अपने प्यार से हमें नवाजा इसी तरह इस घंटे में भी हमारे साथ साथ चलेंगे और गीतों को इंजॉय करेंगे और अपना प्यारा सा साथ हमें देंगे। हमारे हम सफ़र रहेंगे जी हाँ जी तकरीबन 1 घंटा और बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का। तो जल्दी से टाइम चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में जो के वक्त है वो है 9 minutes past 1. 9 मिनट हो चुके हैं 1:00 बजकर।

आपके डेडिकेशंस का सिलसिला और आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो अभी काफ़ी वक्त बाकी है। माजद चाहूँगी, महबूब इलाही भाई आपकी कॉल मिस हो गई, आप काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे लेकिन मसरूफियत की वजह से आपकी कॉल नहीं उठा सकी, माजद चाहती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफ़ रहते हैं आज के दिन, तो अगर आपको टाइम मिला तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपसे बात करना। बहुत शुक्रिया याद आवरिका प्रोग्राम में शिरकत करने का, हमने आपका नाम अपनी लिस्ट में लिख लिया है। आपकी जानिब से आपके दोस्तों को दुआ सलाम हम पहुँचा देंगे और गीत भी आपके नाम ज़रूर लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया याद आवरिका और हमें वक्त देने का। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ जी, अगली डेडिकेशंस हम नाम करना चाहेंगे, हमारी प्यारी सी बहन हिना शौकत आपके नाम करना चाहेंगे, आपकी जानिब से उस्मान भाई के नाम और एजाज भाई के नाम करना चाहेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमें मैसेज मिला, जी हाँ जी, किसका मैसेज मिला था हमें? नसरीन जी, आपने मैसेज किया, आपने कहा कि स्मीना जी बिज़ी हैं आज, तो आपने मैसेज किया और आपने कहा कि हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए गीत लगा दीजिएगा, आशिक के लिए, नसरीन के लिए, फरजाना के लिए, शकीला के लिए, नाइला के लिए, नौरिन के लिए, आबी और जुबीना के लिए और फरजाना के लिए भी। इसके अलावा सबिया भी सुन रही हैं और शीला भी, उनके लिए भी गीत लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपने सभी को सलाम भेजा है और जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आने वाला गीत आपके नाम करेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामेईन को भी ये गीत अच्छा लगेगा।

0: ऐसी मौज के साहिल छूट गया, वरना अपनी कश्ती कौन डबोता है। किस्मत का दस्तूर निराला होता है। जी हाँ जी, सब दारोमदार किस्मत का है। किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ मिल जाता है, किस्मत साथ ना दे तो मिलकर भी छूट जाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत था, बहुत ही प्यारी आवाज़ मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। और अब हमें वो क्या है कि ब्रेक टाइम आन पहुंचा है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपसे।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
4: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद ओ महबूबा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मुकेश की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपके लिए उनके गोशे गुजार किया 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुन रहे हैं और मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ। दो बजे तक फ्राइडे को हमारी मुलाकात होती है, यादों का सफ़र होता है और हमेशा आप हमारे हम सफ़र होते हैं। आज भी आपका साथ आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साथ चलने का बहुत बहुत शुक्रिया, गीतों को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में है और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी महबूब इलाही आपके नाम करना चाहूँगी आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम जो भी सुन रहे हैं और सभी को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएँ आपकी जानिब से। इसके अलावा यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम करना चाहूँगी, तारिक सूफी भाई आपके नाम करना चाहूँगी, अब्दुल कयूम भाई आपके नाम करना चाहूँगी, हिना शौकत आपके नाम करना चाहूँगी, एजाज भाई और उस्मान भाई के नाम करना चाहूँगी और इसी गीत को मैं नाम करना चाहूँगी मिसिस कौर आपके नाम भी करना चाहूँगी, नसरीन जी फरजाना और शकीला जी आपके नाम भी करना चाहूँगी। सो उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे लता जी की इस प्यारी सी आवाज़ में। जाने ना नज़र पहचाने जिगर वो कौन जो दिल पे छाया मेरा अंग अंग मुस्काया।

0: मेरा अंग अंग मुस्काया, लता जी की प्यारी सी आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत था जो आपने सुना। अब आते हैं, आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहना समीना जी। आपने मैसेज किया, आपने कहा आप थोड़ी बिजी थी और अब आपको फुर्सत मिली तो आपकी ब्रेक है, तो आपने मैसेज किया और आपने कहा कि सभी सहेलियों को, सभी टीम को अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है आपने सनराइज़ को, के स्टाफ को भी और तमाम सामीन को भी जो इस वक्त सनराइज़ की नशियात को सुन रहे हैं, उनको भी आपने ढेरों मुबारकबाद दी है जुमा की और ढेरों दुआएँ दी हैं सभी सामीन को भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए ये जो गीत आएगा, कमर्शियल्स का टाइम हो चुका है, कमर्शियल्स की जानिब हम बढ़ेंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो गीत आएगा वो आपके लिए होगा, सभिया के लिए होगा, नायला के लिए होगा, शीला के लिए होगा और इसके अलावा फरजाना जी के लिए होगा और शकीला के लिए होगा। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। बहुत ही खूबसूरत गीत, किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज़ आपने सुनी सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे भी हम आप हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ ही, आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके हम सफ़र, यादों के सफ़र प्रोग्राम में आपके साथ साथ हैं। बस तकरीबन आधा घंटा बाकी है आज की मुलाकात का। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, जिनसे बातें हुई, मुलाकातें हुई, बहुत अच्छा लगा आप तमाम से मिलके। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानी, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में है, लता जी की आवाज़ में है, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिसेस कौर आपके नाम करना चाहूँगी, अजीत कौर बहना आपके नाम करना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी आपकी कॉल मैंने मिस कर दी, ये गीत आपके नाम करूँगी। सो उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी हिना शौकत आपके भी, मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम भी, डॉक्टर बारी मलिक भाई आपके नाम भी, आमना जी आपके नाम भी, वाजिद हडर्सफील्ड में है आपके नाम भी यही गीत करना चाहूँगी, और यही गीत तारिक जुल्फी भाई आपके नाम भी, हीरा खान जी आपके नाम भी, अब्दुल कय्यूम भाई फ्राइजिंग हाउस से आपके नाम भी, और ख़ासतौर पर महबूब इलाही आपके लिए। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम साथियों को और हमारे सामीन को ये गीत अच्छा लगेगा। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे, पूरी दुनिया में सुनी जाती है ये आवाज़। और मैं हूँ शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूँ तकरीबन 15 मिनट हमारा और आपका साथ बाकी बचा है आज की मुलाकात का। उससे पहले प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपको टाइम बता देते हैं और फिर कमर्शियल्स की जानिब बढ़ेंगे।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:44, 44 मिनट हो चुके हैं। एक बजकर ब्रेक लेंगे और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।

रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। लता जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारा जी हाँ मीनिंगफुल गीत था। वाकई ही वो अब हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। जब भी सुनेंगे उनकी आवाज़ उनकी तो हमेशा उनके लिए दुआएं निकलती हैं हमारे दिल से। और बहुत से ऐसे फनकार हैं जो कि जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो हमारे साथ अब नहीं हैं लेकिन उनकी आवाज़ें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। हम भी सुनते हैं और यकीनन हमारे बच्चे भी हमारे बात ज़रूर सुनेंगे क्योंकि जब हम ना होंगे तो फिर वो हमारे गीतों में हमें ढूंढेंगे क्योंकि वो याद करेंगे ना। जब हमारी याद आएगी तो ऐसे भी मेरी बेटी जो कि बाहर होती है जब भी कोई लता जी का या मोहम्मद रफ़ी का कोई गीत सुनती है जहाँ भी तो कहती है मामा मुझे जब भी मैं ये गीत सुनती हूँ तो मुझे आपकी याद बहुत सताती है। मुझे याद आती है गाड़ी में आप ये गीत सुना करती थी मैं सुना करती थी जब आप बचपन में मुझे सुकून लेके जाया करती थी। तो बस ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा हमारे बाद भी गीतों का। तो ये तो थी आज की मुलाकात आज की बातें बस यहीं तक थी हमारे जाने का वक्त। जी हाँ जी आप प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आन पहुँचा है आपसे इजाज़त लेनी है इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे आन मिलेंगे। रिश्ते सलामत रहें यादें बाकी रहें तो मुलाकातें तो होती रहती हैं और होती रहेंगी सनराइज़ रेडियो पे। दुआओं में हमें याद रखिएगा हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें और जहां भी जाएं खैर समेटें और खैर बांटें। यही हमारी दुआ है आप तमाम के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक हम सबका आपका अल्लाह निगहबान अल्लाह हाफिज़ और गुड आफ्टरनून।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 FM ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग-अलग से हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं Sunrise Radio की नशरियात। Ladies and gentlemen, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून एंड स्टिक अराउंड।

ओके ओके, सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि चार दफ़ा छः, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

राइट आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Haribain Bachubhai Nagrecha Hall, 202,

सियाणे कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाणे कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner Sunrise Radio.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
4: मैं जानती हूं, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहां है?
4: Sophie Jewelers, 119-2121, Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014. Sophie Jewelers.

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूंगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूंगा। मैं कहूंगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये ज़हन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

तो लीजिए हम आपको ये देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदड़ी तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास से मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats, and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एख्तिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रुफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Ladies and gentlemen, मैं हूं देवन, देवन युवराज। माफ करना बेथोवन साहब, दे थिंक आई एम अ बैड गाय। दे आर राइट, आई एम अ बैड गाय। थोड़ा सा जिद्दी हूं, थोड़ा सा आवारा, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा नाकारा, यानी टोटल मिला के आई एम अ बैड गाय। ये है मेरी महबूबा जो सोचती है कि मुझे कुछ नहीं आता, ना साज है ना आवाज है, पर मैं बनूंगा सुपरस्टार। तो जाने मन जान लो एक राज, अब सुनो मेरी आवाज।
1: तेरी

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: you noticed the way fans shout at football matches?
1: Oh, wake up!
0: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
2: जुतियां सस्ता सोना नहीं मिली। ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना ए स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नतीला सिर्फ दो पौंड ना। कानस लाने ना, एक पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बारी फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-4895।

0: business looking to make a real difference across our region, the Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 692 3788. Official radio partner, Sunrise Radio.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

0: notice the way fans shout at football matches?
1: Oh, wake up!
0: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच आज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होइयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन।